0: Extreme energy drink.
1: Banking famous believe. चौधरी एटीएम मोबाइल डे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो माध्यम क्या रे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई।

0: California. Extreme energy drink.
1: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भण्डारी चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा
2: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भण्डारी आइतबारदेखि शुक्रबार सम्म साँझ 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल

0: सामाजिक सञ्जाल जी छानले जाँची मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजी पिमिलो खनयामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइटैना URL चेक लना आख्या घटना तल आफै लागि समय समय रि आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 MHz

0: सामाजिक सञ्जाल री छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना URL चेक लना आछेवा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परे म नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: जसको नाम नै पर्याप्त छ
5: दिदी बहिनी
4: दिदी बहिनी
5: दिदी बहिनी
4: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ
5: गर्न सक्छौ

0: यो कागज के मेटिङ वा
1: अ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बाई अफिसर आएर ब्लक लै र खनखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: सर चाहिँ तले लगपर्दि
0: चमलल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेदिया बदेर ब्लक तयाइ भिसा आफै न ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी बेक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी न
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँचीमरी बुझीमरी व्यङ्गै आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उहिसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिको वेबसाइट ना URL चेक लना आक्षेपा घटना तल आपिबै लागि समय समय आफै न पासपोर्ट फेरदिल परे मुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी।